0: बिमाको लाभ दिए आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आजै बनौ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको बिमा अधिकर्ता सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स खुलेर जियौ
1: समीची हूँ चौदह क्या में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंक ने विवरण पी भी मुई खाता लिख हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिल
3: आई समीझो लोटरी पढ़ती हूँ छापता ही गुदी
2: बढ़ दी आप बढ़ दी लोटरी खाली पढ़ दी बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई बिस्या खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
4: सतर्क
3: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
0: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: दिदी किन हो यो छिमेकीमा त सधैँ झगडा कुटपिट मात्रै हुन्छ कतै उजुरी दिने कि
6: हो हिंसा सहनुहुन्न हामी सबै मिलेर यस्तो विभेद रोक्नुपर्छ
5: हिंसा सहेर नबसौ विभेद मुक्त समाज निर्माणमा जुटौ
6: जुनसुकै प्रकारका शारीरिक वा मानसिक हिंसा कानून त दण्डनीय छ लैङ्गिक हिंसा भएको देखेमा वा भोग्नु परेमा तत्काल आवाज उठाउँ र कानूनी उपचार खोजौं
5: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा
7: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: सामाजिक सञ्जालजी छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइलबाट फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिग वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आक्षेपक घटना तल आफै लागि समय समयरी आफै न पासपोर्ट फेरदिल परेम नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगी तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: extreme energy drink.
1: 아니, 땅 가격 게임에 지와 어, 질까이? 그 퍼스널 넘버 블록라이 와디? 퍼스널 모바일 넘버 미 우니요 텔레컴을 바이 오피스터리 아이라 블록라이 라 컬카이 아니, 뱅그리? 뱅그리? 아, 저스인 탈리 랄퍼디 성놀 파티나 아프이나 모바일 넘버 फेरिया बजेर ब्लक पाए विषय आफैन ब्याङ्क देवी जानकारी तिम पर्यम दे आफैन ब्याङ्क खाते न जानकारी अरू न योरी थोनी देख्या सचेत तल पर्यम
2: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: me a extreme energy drink.
1: अनि तयो कागज केमा थियो वा झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबी पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर भए अफिस तरी आएर ब्लक लै र खर्खाई अनि बैंगरी बैंगरी सर चाहिँ तले लल्पर्दी सम लल्पर्दी न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिदिए बेर ब्लक तयाइ विषय आफै न ब्याङ्क दिए पनि जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी प्रज्ञा सचेत तल परिम
2: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज नेपाली मुभीज च्यानल

0: अनि तयो कागज केमे थिवा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदिए
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिसर याई र ब्लक लै र खरखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: सर चाहिँ तले लडपर्दी
0: सम्लपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेदिया बदेर ब्लक तयाइ विषय आफै न ब्याङ्क देबिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थनी प्रज्ञा सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगी ना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चिज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: समीची हूँ चौदह के में बोधे लोटी पड़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलो
2: आई समीच लोटरी पड़ती हूँ छाता ही गुदी
1: भर दी आप भर लोटरी खाली पड़ दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।